किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्हीं।

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाय दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे

0: सदगुरु
1: बिचे पूर्व देवड़ा जिस दी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंको मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग कभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंको शिव मन गहना तजात कबिलास को
0: जंको जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप
1: जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी से निवाजी सत्संग जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच परम दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों श्री ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान स्वर है। और पंचम जिसन पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र दा ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहंदे ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल के अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इस नू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: अरे
1: वो परमात्मा अपने सेवक की प्रतिपालना किवें करदा? जन अगन में है जन आप उधारे कर अपने दे रख है हाथ, अपना हाथ दे के रख लेंदे सिख नु कढ लेंदे किवें? बाह पकड़ तम ते कढ़िया, बाह पकड़ तम ते कढ़िया कर अपना लीना राम, अपना करके बचा लेंदे। जे सिख भी कदी गुरु दा बन के रवे ना ते दुख नेड़े ही ना आ, दुख कदी वापरे ही ना, दुख का कदी सपना भी ना आवे जे सिख गुरु का बन के रहे। पर सिख गुरु तो बेमुख बड़ी जल्दी हो जाता, गुरु तो दूर बड़ी जल्दी चला जाता, कुछ पा लेंदा है ना ते बड़ा गर्व करता, हंकार करता, कहिंदा अज जो मैं पा चुका शायद ही किसी को हो गए, मैं बहुत वड्डा। सिख दूर हो गए, गुरु तो बेमुख हो गए, यह भुल गया कि गीता ते मैनू गुरु नहीं है, बख्शिश ते मेरे सतगुर दी ही है, ते मैं किवें भुल गया कि ओ गुरु दा मेरे सिर ते हाथ है, ताइयों ए वस्तुआं मैनू प्राप्त हो गई, नहीं ते मैनू कौन जानदा सी मैं है की कुछ भी नहीं। जे परमात्मा दी नजर ना होवे, जे ओदी बख्शिश ना होवे, ओदा सिर ते मेर अपने हाथ ना होवे, ते जीव तू ते कदम भी नहीं पुट सकदा, अगला साह भी नहीं लै सकदा, जो कुछ है ओ परमात्मा दी कृपा दे नाल। सिर उपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। जिन्हां ने समझ ले कि साडे सिर ते गुरु दा हाथ है, साडे कारज पूरे ने, सिख काबल दे विच रहिंदा। दुकान करदा, किरत करदा, गुरु नूं वी ते आउंदा, गुरु नूं याद रखदा। पर एक दिन ऐसा आ गया, नाल दे दुकानदारा ने सिख दे नाल हीरा फेरी कीती, सिख दे वटे लै लै ते कट तोल दे वटे वापस दे दिते। नाम पाई कटारू है, सिख नाम जपन वाला है, सिमरन करन वाला है, इसनू पता ही नहीं कि मेरे नाल किसे धोखा कीता है, वैर कीता है, अंदरों बाहरों एक है, कभी ख्याल विच भी नहीं आया कि मैं बेईमानी किसे दे नाल करा, किसे दा बुरा सोचा, क्योंकि सिख बुरा नहीं सोचता, भला ही करता है जिहड़ा गुरु दा सिख है। अज किरत कर रहे, समान तोल तोल दे रहे, एक ऐसा ऑफिसर आया समान लै गए, पर मन अंदर शंका पैदा होया कि मैं समान नूं तोल क्यों ना लवां, ऐवें शंका आ गए, कर गया तोलिया, वेखिया अज हर वस्तु दे विचों तोल घट है। वापस दुकान ते आ गया ते आके कहा, क्यों भाई तू बैठ के इत्थे कट तोलने? कहिंदा नहीं, मैं कट नहीं तोलदा। आखिया भाई तू ते गुरसिख है, ते गुरसिख ने कदी कट बोलिया नहीं ते झूठ, कदी बोलिया नहीं ते कट तोलिया नहीं, तू ए किवें कीता है? आखदा है महाराज मैं कुछ नहीं जानदा, मेरे वटे सही ने, मैं पूरा तोल रहे हैं। ते सिख है ना नरम दिल दा, कहिंदा जी महाराज जी मेरे को कुछ भुल हो गई ते भुल बख्श दे, जे कट तोलिया गया ते होर लै जाओ, पर मैं ए भुल जान बुझ के नहीं कीती। पर वो गर्म हो गए, कहिंदा नहीं तू जान के कट तोले, तेरी वटे कट नहीं, ये वटे तोले जान गए। कहिंदा बेशक, क्योंकि गुरसिख नूं पूरा यकीन है कि मैं कट नहीं तोल रहे, पूरा तोले है, पर ए नहीं जानदा कि किसे ने तेरे नाल वैर कीता है, तेरे वटे तब्दील कर दिते ने। अज गुरसिख अमृत वेले उठ के सुखमणि पढ़न वाला अज कहिंदा सतगुर कर कृपा, अचनचेत ए जी भुल हो गई है ते मेरी भुल बख्श दे, कर कृपा समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, अज मेरे सिर ते हाथ रख के मेरी लाज बचा लै, मैं जिंदगी विच कदी ऐसा काम कीता ही नहीं, अज मेरे सामने किवें आ गए, सतगुरु कृपा करी। सिर उपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताकै कारज पूरा, सतगुरु तखत ते विराजमान ने गुरु अर्जन साहिब ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਧਰ ਅਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਟਗਾ ਤੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ, ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਟੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਟਗਾ ਉਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਫੀਸਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਟਗਾ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਗਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੱਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਵੱਟੇ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਔਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ।

परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैणा वालों आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहिंदे ने कि प्रगटो, जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज वज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने के मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हों का संबंध जिहड़ा है विसाखी के नाल। छेवें पातशाह ने यह ढाडी पैदा कीते ते सिख इतिहास नूं संभालण लई, सूरमिया ते योध्यां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा कट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लै के दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे कट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, और कृपान जो गुरु के सिख लेके खड़े, और मंग की कि एक सिर की लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लिया ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर की लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या एक गभरू उठे, जेदी 30 साल की उम्र है, जेदा ना है भाई दया राम, और जेदे माता का ना शोभा देई और पिता का नाम मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह के चरणा विच आके कह लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर 605 सी कि एक वेर चीज अर्पण कीती दोबारा भी अर्पण कीती जा सकती है। कह लगा जदों 13 साल की उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम के नाल तुहाडे दर ते आया सां, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे

कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं। यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा। टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू। यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1,000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak, Bhagat Ravdas says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanidh, Mehma Agad Bodh, Namo, Namo, Namo, Namo, Neth, Neth, Neth hai.

परमेश्वर कहायो पाठ अपने इस शब्द धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं लिखते ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लेके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरुदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई कालना ना कालनी पवे, इस तरह ने ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी।

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दिया आसा पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो। जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ये गल वखरी है। आस भी कई प्रकार की है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आयो

कर आसा आयो प्रभ मांगण। मैं बड़ी आस करके ही मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवे दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसे दी आस पूरी हुंदी है। हां एक गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड्ड के चला गया। इथे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउनी है,

हुई है। उन्होंने बहुत प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, बाहे जिना की पकड़ी है, सिर की जय बाहे ना छोटी है। असं जकारा बुलावे, सारे ने उच्ची वाह करनी है, सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

बाबा जी दे गुण पता कितों लगन गे, बाबा जी दा जीवन पढ़ के मैं शॉर्ट जाई करदा। जदों अमृत छकाया ना कलगीधर जी ने ते बाबा दीप सिंह जी ने पौ पिंड भरपूर जवानी उदों ही चा चढ़ गया मैं भी छकना है। हुण कशहरा पहनना है। माता पिता नाल जदों आए आनंदपुर साहब दे दात लैण लई मेरे गुरु दी कृपा नाल पौविंद साहब अजायब घर बनना जी। अजे 15 दिन होए ने 47 सीन जड़े ने ना वो पास कीते ने। उन्हां च भी सीन है बाबा जी अपने परिवार नाल आंदे पए ने। ओ पुराना टांगे विखाए ने पुराने समय दीआं चीजां। कुछ नवे जमाने मुताबक अजकल अजायब घर चल पए ने। एक हुंदा अजायब घर नूं फिर के वेखणा। एक वेखण वाला एक जगह खलो जाए ते तस्वीरां चलदीआं ओ देखांगे जिवें वी बाबा जी कृपा करन। एक कंप्यूटर सिस्टम वी है बई कुर्सियां ते बाद ते सारे जेड़े पोज चलदे आणगे। माड़ा जिहा ध्यान चो कढ़ी दा किसे होमे वस नहीं आप जी दी असीस मिल जाए। संगत दे ध्यान चो चीज निकल जाए ही बड़ी बख्शीश मिल जाती है। बाबा जी जदों पौ पिंड तो आए आनंदपुर साहब ए दात प्राप्त कीती अठ दस दिन बीत गए। माता जी कहिंदे घर चलो कहिंदे मैं जाना नहीं। शॉर्ट करना पिया कलगीधर कहिंदे वी माता जी कहिंदे ने जाओ। बाबा जी चुप मालक के की जवाब। गुरु गोविंद सिंह जी ने बचन भी कीता फिर माता पिता जी नूं भई इन्हां दा मन इत्थे रह के ही सेवा करन ते आ। ये दीप है इन्हें कई बूझे दीवे जगाउणे जगाउणे की अज तक जगा रहे हैं।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं भटका, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नियां, होर भी कई हो जाए।

इन बाबा दीप सिंह जी संगत दे झूठे कौले मांजदे पे सी। अज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले मांजन। बाबा ही कोले मांजदे पे, कोला हाथ चे नाल सिमरन नाल कोला, नाल सिमरन नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ते कहंदे कौला हाथ विच ही है, सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, डंडौत करके मालक नू कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघा नू होना कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे। बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल, ते तन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे अज दीप सिंह एक गल